हो भगत करेव हो, मिलिया का क्या मेलो, एक पुले नावो थेव हो थावो, गुर शब्दी सच खेलो, जम मार्ग नहीं जाना शब्द समाणा, जुग जुग सच है वैसे, साजन सैन मिलो संजोगे, गुर मिल खोले फासे, बाबा ना गड़ा आया जग में, दुख सुख लेख लिखाया, लिखियड़ा शाह ना टले जिहड़ा पुरब कमाया, वैसा चै लिखिया अमृत बिखिया जित ला।

रण रौन कुर है रंग न तुंग फकीर वरी अपु अपनी कोई न बंदे तीर जो उपजो सो बिन सो है परो आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह

जबन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को शिव गुण सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन की सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पढ़ पढ़ की जानै। जावुद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देही अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देही तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का जीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है देती, वर्णत भिन्न भिन्न तोह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बाहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुवै बैठा, कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभ।

दोस्त जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करोरण काता जे अस्तुता सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे। जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकट न आय है। रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तन कमै हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता, किल भिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जा पाए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िल्ला। सुने गुंग जो जाहि सुरसना पावई, सुने मूढ़ चित लाई,

0: जोदे फूला सिंह जे किधरे नलुए जे बलवान जी दे श्याम सिंह जे सूर में
1: श्याम सिंह रे सूर में सी

जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन काई है स्वाव, जन के संग चित आवे नाओ। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझ को सौंपते क्या लागे मेरा। सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटीए, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटीए, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांद साह, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दावे साह, सतनाम

जुग जुग अटल। चवर तखत सिंघासन दे मालक धन धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागी हो जो संध्या वेले दे दीवाना दे विच हाजरियां भर के गुरु साहिब जी दी पावन गुरबाणी सरवण करके अपने जीवन नूं, अपने स्वासां नूं आप जी सफना कर रहे हो। गुरु साहिब जी कृपा करन, सरबा संगतां दीआं हाजरियां दर प्रवान करन, अपने दरों करो सरबा संगतां नूं। सतगुरु जी अपने दरों करो नामदान, गुरसिखी जीवन बख्शिश करके निहाल करन। सतगुरां दी पावन गुरबाणी दा फरमान है, अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले है सारिंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछाने। दे मां वाक अनुसार अज भगत कबीर जी का जन्म दिहाड़ा सतगुरां दे पावन स्थान ते बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मनाया गया है। भगत कबीर जी का जन्म 14वीं सदी के दौरान बनारस विखे होया। भगत कबीर साहब जी बचपन तो ही परमात्मा की उस्तत दे विच लीन रहिंदे सन। मध्यकाल दौरान भगती लहर नूं शिखरां तक पहुँचाउण दे विच भगत जी का वड्डा योगदान है। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी अंदर 17 रागां दे विच शोभित भगत जी की बाणी का मुख उद्देश मनुख नूं अध्यात्मक मार्ग के पंधी बनाउणा है। भगत जी की बाणी विच ऊच नीच, जात पात, कर्मकांड, भेख, आडंबर आदि समाजिक कुरीतियां का प्रचंड रूप दे विच विरोध होया मिलता है। भगत कबीर जी अध्यात्मिक होने के नाल नाल उच्च कोटि के समाज सुधारक भी सन। मनुखता नूं सच का मार्ग विखाउण बारे भगत कबीर जी दे जन्म दिहाड़े दीआं सारीआं संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां। गुरु साहिब जी कृपा करन, इसे तरह सिर ते हथ रख के आने वाले दिहाड़े मनाउण दे बारे उद्दम बख्शिश करन। अज दा विशेष ध्यान जिथे भगत कबीर जी दे जन्म दिहाड़ी खुशी में सजे ने, उत्थे नाल ही अज विशेष दीवान, अज दा दिन शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी उन्हां दा भी अकाल चलाना दिवस है। सो सारियां संगतां दे सहयोग सदका ये सारे दिहाड़े बड़ी चढ़दी कला दे नाल मनाए गए ने। गुरु साहिब जी कृपा करन, सिर ते हथ रख के आने वाले दिहाड़े मनाउण दे बारे उद्दम बख्शिश करन। संगतां दे चरणां विच बेनती है कि कल नूं 30 तरीक नूं गुरु घर विखे मीरी पीरी दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मनाया जा रहा है। कल नूं अमृत वेले दे दीवान अते शाम दे दीवान धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब की खुशी विसजनगे। सारिया संगतां ने वध तों वध हाजरी भर के लाभ प्राप्त करने की कृपालता करनी। आईया हुई संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन सरूपां की सेवा होगी, नाल सोलह साहिब जी के पाठ, उपरंत सतगुरु जी अपने निजासना जान के फिर आप जी ने गुरु का लंगर छा के जाने की कृपालता करनी। फुलां चुक्कां की खिमां जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरू।

ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ता किए करते का होए विचारो, तित कर गावो सोहेला सेवर सृजनहारो। तुम गाव हो मेरे निरपाव का सोहेला, हो वारी नित सुलह सदा सुकोहे रहाओ। नित नित जीड़े समारियन देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत न पवै तिसदा ते गमन सुमार। संबत साह लिखिया मिल कर पाव हो तेल, देहो सजन असी सड़ियाँ जो हो वह साहिब सुमेल। कार कारे हो पाहुचा सतड़िन दवान, सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला, छे कर छे गुर छे उपदेस, गुर गुर को वे सुनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए, सो कर राख वडाई तोय रहाओ। विस विच असियां कड़ियां पैरा, थिति वारी माह हुआ। सूरज को रुतनेक, नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती धूप। मन आण दो पवन चबरो करे, सगल बन राय फूलां तो ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस तब नैन निर्नैन है तोहे का, सहस मूर्त न एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध इव चल तो मोही। सब में जोत जोत है सोए, जिस जय चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत सभाव सो आरती होए। हर चरण कवर मकरंद लोभित मनो, अनदन मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंका, होए जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोधन गर्भा भरिया मन साधु खंडल खंडा हे। पूरे पुलक तुलखे गुर पाया, मन हर ले मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे। रहाओ साकत हर रस साधना जाने, तनंतर हो मैं कंडा हे। ज्यो ज्यो चलै जवैत गुपावै, जम काल सह सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समान, दुख जन्म मरण पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बा सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख बड़ वड्डा हे। जन नानक नाम दार टेक है, हर नाम ही सुख मंडा है। राग गौड़ी

जे रसन चाखियो ते जन तृपत आगाए, जेह ठाकुर सुप्रसन पेयो सत संगत तेह प्यार, हर गुर नानक जिन परसियो तिन सब कियो उदार, जेह ठाकुर।

0: फिर एक है भुजंग पर्यात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने
1: नमो देव देवे अपेखी अपेवे
0: नमो काल काले नमो सर्व पाले
1: नमो सर्व गौणे।

0: अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे
1: समस्ति प्रभुते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
1: परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे
1: नमो राज परम वृद्धे
0: नमो शस्त्रपाणे नमो

0: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र
1: नमो इष्टि नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासि
1: रूपे समस्तु निवासि
0: सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद कर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोक्षपालं
1: सदा श्रद्धा से दाता दयालं
0: अचेदिय पेदिय नामंग कामं
1: समस्तो पराजि समस्तस्तामं
0: तेरा जोर चाचरी छंजले है थले है पीत है अपे है
1: प्रभु है अदू है अदेश है अपेश
0: भुजंग पर्याद छंदे अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे
1: नमो सर्वमाने समस्त निधाने
0: नमस्तुंग निर्नाथे नमस्तुंग प्रमाथे
1: नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे
0: नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले
1: नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे
0: नमो राज राजे नमो साज साजे
1: नमो शाह शाहे नमो माह माहे
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
1: नमो रोख रोखे नमो शोक शोके
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व पोगे
1: नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग
0: नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग
1: नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग
0: नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग
1: नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे
0: नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे
1: अकीजे अपीजे समस्तंग प्रसीजे
0: कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी
1: सदा सर्वदा सिद्धंग निवासी
0: चरपट छन्त्व प्रसाद अनमृत कर्मे अनमृत तर्मे

0: चाचरी संत प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता
1: चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती
1: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए
0: चाचरी छंद न सतराय न मित्राय न परमंग न पितराय।

0: सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता,
1: के सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी,
0: कि सर्वत्र काजय कि सर्वत्र राजय,
1: के सर्वत्र सोखे कि सर्वत्र पोखे,
0: कि सर्वत्र त्राणे कि सर्वत्र प्राण,
1: के सर्वत्र देश कि सर्वत्र पेसे,
0: कि सर्वत्र मानिए कि सदैव प्रदानिए,
1: के सर्वत्र जापिए कि सर्वत्र थापिए,
0: कि सर्वत्र पाने कि सर्वत्र माने,
1: के सर्वत्र इंद्र कि सर्वत्र चंद्र,
0: कि सर्वं कलीमे कि परमं फहीमे,
1: के अकल अलामे के साहेब कलामे,
0: कि हुस्न वजू है तमाम
1: सलामे सली कुतुब दामे,
0: गनिमुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते,
1: बलिंदुल मकाने जमीनुल जमाने,
0: तमीजुल तमामे रजुल निदाने,
1: हरिफुल अजी में रजाज यकीने,
0: अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है,
1: अजी जो निवाज है गनिमुल खिराज है,
0: निरुकत स्वरूप है त्रिमुकत विभूत है,
1: प्रभुक्त प्रभा है संयुक्त सुधा है,
0: सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है,
1: समस्त उपराज है सदा सर्व साज है,
0: समस्त सलाम है सदैव अलका,
1: निर्बाध स्वरूप है गाद है अनूप है,
0: ओम गाद रूपे अनाथ स्वरूप,
1: अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे,
0: त्रिभर्गं त्रिपादे अगंजे अगादे,
1: सुगन सर्पागे सुसर्वानुरागे,
0: त्रिपुगत स्वरूप है छिज है छूप,
1: के नरकं प्रनाश है प्रथुल प्रवास है,
0: निरुकत प्रभा है सदैव सदा,
1: विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है,
0: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा,
1: अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है,
0: चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है,
1: अपरम है कर्म है अनाद है जुगाद है,
0: अजय है अभय है अपूत है अतूत है,
1: अनाश है उदास है अदंध है अबंध है,
0: अपगत है बिरकत है अनास है प्रकाश है,
1: चिंता है सुनिता है अलिखा है अधिक है,
0: अलेख है अपेख है अटा है अगा है,
1: असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है,
0: अनित है सुनित है अजाद है अजाद,
1: चरपर छंता प्रसाद,
0: सर्वं हंता सर्वं गंता,
1: सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता,
0: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता,
1: सर्वं प्राण सर्वं त्राण,
0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं,
1: सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता,
0: रसावल छंत्व प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाश,
1: अनंदन स्वरूपे अपंगं प्रभूते,
0: प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे,
1: अगाध स्वरूपे निर्बाध प्रभूते,
0: अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे,
1: नरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे,
0: न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे,
1: निताते न भाते न जाते न पाते,
0: निसाकं सरीक है अमित अमीक,
1: सदैवं प्रभा है अजय है अजा है,
0: भगवती चंद
2: कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर।

0: के जुर्रत जमाल है, के अजब स्वरूप है, के अंतो प्रभूत है, के अचलम रंग है, के अंतो अपंग है।
1: प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदा,
0: हर भर अगंज हर नर प्रपंज,
1: अनगन प्रणाम गुण मन,
0: हर नर अखंड भर नर अमंड,
1: भवनाश मन मन प्रकाश
0: गुण गण प्रणाम, जल थल मुदाम, उपमा अपार गत में तुदार, जल थल महंत दिस विश बेअंत, आजान बाहु एक के सुदाहु, खल खंड ख्याल गुर भर अकाल, अंचित गात अजिज न बात, अंटुन पनार अंडठ पार, अनभन अंत दा

पढ़ते पर हैं तृणा कर हैं अत्या कृत है अमृत अमृत है अत्या कृत है तरनीत है अत्या कृत है अमृत अमृत है नरनायक है खलका।

0: संग अनूप उतंग सुरंग सवारे
1: को तुरंग कुरंग से कूद पौन के गोन को जात निवारे
0: पारी पुजान के पूप पली बित न्यावत शीश ना जात बिचारे
1: ते पर तो का पर भूप दंत को ना गई पाए पधारे
0: जीत फिरे सब देश दिशान को बाजट दोल मृदंग नगारे
1: गुंजत गुण गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे
0: भूत पविक पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्री भगवान अंत को अंत के ताम सुधारे
0: तीर्थ नान देव दया दमदान सुसंजम नेम अनेक विषेके
1: देव पुराण देव पुराण जमीन जमान सबान के पेख
0: कौन आहार जति जत थार सब ऐसो विचार हजार के देखे
1: श्री भगवान पजे बिन भूपते कृति बिन एक न लिखा
0: शुद्ध सिपा दुरंत दुबा सो साज सना दुर्जान दलेंगे
1: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख लेना लेंगे
0: तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे
1: श्री भगवान कृपा बिन त्याग दान चलेंगे
0: वीर पाठ बड़े बड़े यार पछारे सार की थार पछैया
1: तोर देश मलंद मवासन माते गजान के मान मलिया
0: गारे गरान को तोरनहार सो बातन ही चकर चार लवैया
1: साई श्री सब को सरनायक जाच कनेक सो एक दिवैया
0: दानव देव निंद निसाचर पूत पविक पवान जपेंगे
1: जी जिते जल में थल में बल ही बल में सब थाप थपेंगे
0: पुन प्रतापन बाट जैत तो न पापन के भूपुंज कपेंगे
1: सात समूह पर सन फिरे जग सतर सबे अब लोग छपेंगे
0: मानव इंद्र गजेंद्र नरात पजोन त्रिलोक को राज करेंगे
1: कोट स्नान गजा दिकदान अनेक स्वयंबर साज परेंगे
0: ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जंब फास परेंगे
1: जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फेर न दे तरेंगे
0: कहा पयो जो दो लोचन मुंद कै बैठ रहियो बख ध्यान लगायो
1: न

0: पापी मुदयति बनन बन बन दयति
1: तुमरा लखा न जाय पसारा कह बि सजा प्रथम संसारा
0: एक रूप नूप स्वरूप रंग पियो राव के उपा
1: अंड जे रस एक कीनी उत्पुज खान बहु रच दीनी
0: ओम भूला जह वेत कौन सी उपस

0: जब सबने परे तिनके दुष्ट कुतु मरे
1: पुरख जवन पग परे प्यारे तिनके तुम संकट सब तारे
0: जो कल कोई बात या है ताके काल निगनी आए है
1: रचा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्टरे तत्काला
0: के पा दुष्यन जाए ना रो ताके ताव निग मर हो
1: तेद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्चा छव सके ना कोई
0: एक बार जिंद में संभारा काल फास्टे

0: जमीन को दे जमान को दे
1: गाय को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मा पतले है
0: रोगन ते अरसोगन ते डल जोगन ते बहु भात विचावे
1: सतनेक चलावत काव तो तनेक न लागन पावे
0: लागत है अपना कर दे कर बाप शंभू न पेट न पावे
1: और की बात कहा कह तो सो सो पेटी के बट बीच बचावे
0: यश पियंग सो दान देव पेव तुम्हें सभी करते आवे
1: मकास पताल सातल जाच पुजंग सवे से न्यावे
0: भाई सके नहीं पार प्रवाहु को नेति नेता वेद बतावे
1: खोल सके सभी कुजिया सुरहार परे हर हाथ नावे
0: नारद से चतुरान से रुमनारक से सबू मिल गायो
1: वेद देव ना पेद लख्यो सवार परे हर हाथ नायो
0: भाई सके नहीं पार माप सिद्ध सनाथ सनातन त्यायो
1: ध्यान धरो तह को मन में जय को अमितो सब जग छायो
0: वेद पुराण के देव कराण भेद नृपान सब पच हारे
1: भेद न पाए सके अनभेद को खेद दयान छेद पुकारे
0: राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साख ना सोग ना संग त्यारे
1: आद नाद गाद पैक दैक जप्यो

0: खसम के कौन कीमत पावे।
1: ध्यान सुनत से भगत सुहावे,
0: अगम अगोचर साहेबो।

0: संत प्रसाद मोको नाम निवास।
1: गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा
0: गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव बंद सहोदरा
1: माता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरोधरा
0: गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्ते गुरुदेव पारस परस्परा
1: तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा
0: गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा
1: जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा
0: गुरुदेव संगत प्रब मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा
2: गुरुदेव संगत प्रब मेल कर कृपा
0: हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा
2: श्री महला पंजमा औखी कड़ी न देखन देई अपना बिरद समाले
0: हाँ दे राखे अपने को सास सास प्रित पाले
2: लाग रहे हो मेरा चीत
0: आद अंत प्रभ सदा सहा

जन नानक गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कर आया पौड़ी वड्डी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तबा।

सतगुर सुख विखालिया सच्चा शब्द विचार नानक अवर न सूझई हर बिन बख्शन हार सतगुर सुख विखालिया सच्चा शब्द विचार नानक अवर न

कृपा मैं सुख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्र।